0: But even as solar development expands, not all nearby villages have access to electricity. At night, Bhagirath, one of Kishanji's brothers, returns to a house that still has no grid electricity. While transmission lines may run nearby, extending power to scattered desert settlements has been a challenge.
1: चारों तरफ सोलर प्लांट लगा हुआ है, घर में लाइट नहीं है। वो कोई छोटी मोटी लाइट बैटरी बूटी से उसे काम चलाते हैं और चारों तरफ सोलर की लाइट है। हमारी लाइट डानी में नहीं, मकान में लाइट।
0: His family relies on a small battery-powered light from a portable solar panel, enough only for basic needs.
1: नहीं है लाइट वजह से हमारे फसल नहीं ज्यादा उत्पादन कर सकते। लाइट होती तो फसल ज्यादा उत्पादन कर सकते।
0: For families like Bhagirath's, the benefits of mass solar farm expansion that's happening in his very own village remain out of reach. In Norang Desar village, another challenge shapes daily life: water. Santosh and Suraibane begin the day by walking more than 2 kilometers to fetch water for their families and livestock.
2: हमारे पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे पास में गांव के पास में पानी कभी कभी मिलता भी नहीं है।
3: दूर जाके लाना पड़ता है, लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर जाके पैदल जाके लाना पड़ता है।
0: In many drought-prone parts of India, water is still delivered by tanker trucks, a temporary lifeline for villagers when local supplies run dry.
2: हमारे टैंकर से मंगवा रहे हैं और टैंकर 5-7 दिन नहीं आ रहा है। गर्मी में तो बहुत ही सारा ऊंट और पशु है, वो भी तीसरा रहता है।
0: With the arrival of solar farms, that limited water supply is now shared. Panels need to be cleaned regularly, especially in the dusty desert.
3: हमारे यहाँ एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ सोलर प्लांट होने के कारण हमारे यहाँ टैंकर है वहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है हमारे लिए कि पानी यहाँ नहीं पहुँच रहा है हमारे लिए।
0: In the Thar desert, where water has always been scarce, the demand for solar is placing new pressure on an already limited resource.

0: देख वजह से मैंने ये लगाया है। ये 10 पंप और 10 किलो वाट का सोलर पंप है, करीब इनकी लागत 4.25 लाख रुपया से लगवाया है ये। इनसे फायदा हमारे को होता है, ये मतलब बिजली नहीं लगती है, बिजली का हमेशा बिल भरना पड़ता है, इनका एक बार पैसा लगा हमारे को।
1: Instead of monthly bills, it's a one-time investment, and over time, that has made a difference.
0: वो फायदा हुआ हमारे को। अभी मेरे को एक बार ही पैसा देना पड़ता है। ये 10 HP की मोटर चल रही है हमारे यहाँ। इनका कोई खर्चा नहीं है। ये 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बराबर चलती है कंटिन्यू।
1: More than 2 million farmers across India currently benefit from this system.
0: कुल मिला के ये मतलब राजस्थान के अंदर ये फायदेमंद चीज है। ये हमारे पहले लाइट से चलता था, लाइट में हमारे को परेशानी ज्यादा होती थी। वो 6 घंटा लाइट देते थे, कभी कटौती कर देते थे, कभी 4 घंटा भी कर देते थे। अब हमारे को मतलब 14 घंटा, गर्मी में 12-14 घंटा तक सोलर पंप से लाइट चलती है। हमारे को डबल फायदा हो गया।
1: For farmers like Ram, solar power has become a practical solution.

0: As solar projects expand across Rajasthan, opportunities open up.
1: We are the solar panel manufacturing leaders in India. That's we are making solar panel top one up to 630 watt panels.
0: While many panels today produce around 600 watts of power, newer, high-efficiency models can reach 630 watts or more. On its own, the difference is small, but across an entire solar farm, it can power many more homes.
1: राजस्थान के इकॉनमी को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं बेसिकली तीन पॉइंट्स पे हम मतलब के राजस्थान की जीडीपी को इन्हेंस कर रहे हैं सेकंड वन इज हम मतलब के लॉजिस्टिक जो पार्ट है उसमें इन्हेंस कर रहे हैं एंड थर्ड वन इज मैन पावर जो हमारी एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसमें 90% की मैन पावर को राजस्थान की है जिनको हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और हम यहाँ का इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं लोकल
0: The company employs around 450 people directly, with another 250 working indirectly in areas such as logistics.
1: Solar 91 was one of the solar distributor, जिसके साथ हम काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और वो basically उसको हम services, उसकी requirements की fulfill करना राजस्थान में रेडिएशन लेवल इतना ज़्यादा होने की वजह से एक टाइम पे अभिषेक खराब माना जाता था

0: Further away, camel herder Manaj is facing a similar loss of access to land.
1: अब तीन चार उठ रखा क्योंकि अब इनकम कम होने लगी.
0: In the Thar, camels have long been used to carry goods and travel across desert terrain where other forms of transport struggle.
1: ऊंट रेगिस्तान में जा जाए ये बहुत दूर जा सकता है, 10 दिन भूखा त्यासा रह सकता है, 30 साल बिना पानी, ये मिट्टी में चल सकता है, फंसता नहीं है.
0: But with solar farms spreading across the landscape, Manaj has found it challenging to find food and water for the camels.
1: दिन में 30 किलो चारों खेत कटने लगा, खर्चा ज्यादा है, इनकम कम हो रही है, चारों बिचारों खेत जड़ कटने लगी, सूरज बल्ला टाला, बजाऊं कम होने लगी, इस चारों महंगो हो.
0: Manaj worries his days in the trade may be numbered as an age-old tradition gives way to new technology.
1: अब तो ऊंट का भाड़ा को नहीं, इन वास्ते महीने में एक बार आवे, 20 दिन खोड़ में जरानो पड़े, इन वास्ते पिता भाड़ा कौन पहला जीता. पहले गेड़ा ज्यादा होता, इन वास्ते ज्यादा ही इनकम